0: થોડી જ ક્ષણોમાં હિન્દીમાં સમાચાર દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી રિલે કરાશે.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ પ્રેમ રોજ. भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है. श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की. वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे. भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया.

0: जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ में बने रहने के लिए यह मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भुज प्रस्तुत छे विचार बिंदु, हास्य जीवन नो रस, पठन सुरेश बिजलाणी।
2: विचार बिंदु। तनाव भर्या समय मां साहजिक हास्य लुप्त थतुं जाय छे। माटे केटलाक लोको सवारे एकठा थई सामूहिक कृत्रिम हास्य करता जोवा मळे छे। मतलब माणस हास्य ने शोधे छे। जरे घणा एवा पण छे जेमना जीवन मां आनंद छे, हास्य छे, એમને હાસ્ય શોધવા જવું નથી પડતું। નાની નાની વાતોમાંથી પણ એ હસી લેતા હોય છે। એનો મતલબ એ નથી કે એમના જીવનમાં શોક નથી। જે શોક અને દુઃખના માર્ગેથી રસ્તો કાઢી આનંદના રસ્તા શોધી લેતા હોય તેમને હાસ્ય ક્લબના સભ્ય બનવાની જરૂર નથી પડતી। विचार बिंदु।
1: આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી આપ સાંભળી રહ્યા હતા વિચાર બિંદુ, હાસ્ય જીવનનો રસ. પઠન કર્યું સુરેશ બિજલાણી. હવે પ્રસ્તુત છે ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ અર્ચના. પ્રથમ સાંભળીએ કબીરદાસની આ રચના પ્રાગજી જીવન મુસદિયાના સ્વરમાં.

0: के पीड़ा में बदले लिंगड़ों शरबत छाश गिरिनों से बेहतरों धरती बाहर निकलती वक़्ते माथो ढाक और टोपी गॉगल्स के छतरी में उपयोग करो। मसालेदार खोराक में बदले पानी में सारो प्रमाण धरावता मौसमी फलों जेवा के तरबूज टेटी वगैरह बदू लो। कैछा रंगा सुथराओ कपड़ा पहरो। टाइम छटाए जो लू लगे तो तात्कालिक ओआरएस अथवा मीठा अने साकर ना पानी नु सेवन करो। चायरा वाली जगह अने बने तो ठंडक वाली जगह रहो। इमरजेंसी में डॉक्टर ना तात्कालिक संपर्क करो। प्रकृति तो पोतानु स्वरूप बताशे ज, पण जो साथे मळीने रहीशुं सचेत तो लू ना प्रकोप सामे थईशुं सुरक्षित।
1: दिलीप सिंह जाडेजाना स्वर में सांभळी दास सवानु आ भजन।

0: बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी ना भूज केंद्र पर थी आप सांभी रहा छो भक्ति संगीत नो कार्यक्रम अर्चना। सांभी मेरा भाई नु अभजन सुमर मामत भाई ना कंठे।

अक्षय कुमार के वध करने के बाद भी तूने इसी गुण ग्राहकता के कारण हनुमान का कोई अहित नहीं किया। फिर अपने पिता बाली के हाथों रावण को क्षमादान का स्मरण कर बोले, मैंने जगत में कई रावण होने की बात सुनी है। एक रावण तो वो था जो जब बाली को जीतने पाताल लोक गया तो बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बाली ने दया कर उसे मुक्त कराया। एक और रावण को जंतु समझ सहस्रबाहु ने पकड़ लिया था। कौतुक के लिए जब उसे घर ले आए तो पुलस्त ऋषि ने उसे मुक्त कराया। एक रावण वो भी था जिसे बाली ने अपनी कांख में दबा लिया था। इनमें से तू कौन सा रावण है?

0: संगठन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वीडिश समुदाय आमंत्रिता गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समुदाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समुदायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियान स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीय उपस्थितिः संवर्धनाय

0: यात्राया चतुर्थचरण मार्गे सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भवद्रयाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्य श्रीमोदी अद्य नॉर्वे सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिण मोदिन नॉर्वे एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हिलार्ड पंचम अथ रानी सोम्या साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जूलियस बोस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयं वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलं शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमन्त्रीरूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन युनाइटेड डेमोक्रेटिक दलयुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाह गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे सप्तशतं कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्वि दिवसीय यात्राविधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य शतं कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाह विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाह सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाह एआई तथा डीटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्थानौ इति वर्णितवान्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे वो सभी क्षेत्र में अब भारत फाउंडर बनकर अपने मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे ट्रैक्टर बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अंत चक्रवर्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
2: नमस्कार।

उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल

उभरते प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टेफन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गेर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे।

कि भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता बीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री

अच्छी तो कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलबंदी माध्यम से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति

0: जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए
1: स्वाभाविक है कोई शिशु जन्म लेता तो सबसे पहले रोता और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब लोग खुशी मनाने लगते। भक्त कबीर ने कितनी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया।
0: कबीरा जब हम पैदा हुए जग

मौसम पर मानसून के सामान्य तिथि से छह दिन पहले 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री

0: यूपीए संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। सभी उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन विंड मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्र पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी।

0: साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नई पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी

0: Nordic çıkarsa neden kalı oga? İs sınırlarının şu modi cesa Norway, Denmark, Finland, Iceland or Sweden ki prenantri şamil hundi. Sakshi Singh ki report ke saat samachar kutsu se maa Mukesh Kumar.
1: Kendriya Swasthya aur Parivar Kalyan Mantri Jagat Prakash Nadda 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोच

मुख्यमंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। यह समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल

साथ हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरल के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से

लिए जनगणना के पहले चरण मकान सूची करो और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वी ए वरा ने स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0112331 0481 और 0112371 71 9289 0404

एजेंसी के अनुसार मुंगेरी नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत

0: सन राइजर्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और

दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी

समझता था न हर टाइम्स संपादकीय में लिखा है। ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी। शिक्षा और जागरूकता पर बातें

इस किस्म के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल

0: was that a revisitation to this one in the Chief Minister of Kerala today? Southwest monsoon likely to hit Kerala coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. As of that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे मुख्य समाचार। राज्यना ड्रीम प्रोजेक्ट कल्पसर योजना ने नेदरलैंड्स ने टेक्निकल कुशलता ने निपुणता नो लाभ मळशे। केन्द्रीय गृह ने सहकार मंत्री अमित शाहे गुजरात ना गांधीनगर में 700 करोड़ रूपया थी वधुना विकास कार्यो ने भेट आपी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 मे ना रोज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश लोगों समक्ष पोताना विचारों रजू करते आ मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134मी कड़ी हशे। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशीए जणाव्यु भारत एक ज दिवस में 256 गीगावॉट वीजड़ी की मांग सफलतापूर्वक पूर्ण करी। लश्कारी साधनों वहन करता जहाजों ने होर्मुझ समुद्र धुनी पसार न थवा देवा ईरान की चेतवनी। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडूए गईकाले दिल्ली सरकार विमान टर्बाइन ईंधन एटीएफ पर मूल्यवर्धित कर 25% थी घटाड़ी 7% करने निर्णय की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले वस्ती गणतरी 2027 अंतर्गत स्वगणतरी राज्यव्यापी प्रारंभ करो। आगामी 2 दिवस दरमियान सौराष्ट्र कच्छ सहित दरियाकांठा विस्तार में गरम और भेजवाड़ू वातावरण रहने शक्यता। क्रांतिगुरू श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी विज्युअल आर्ट्स विभाग तेमज कच्छ म्यूजियम भूजना संयुक्त उपक्रमें कच्छ म्यूजियम एक्जीबीशन हॉल खाते 3 दिवसीय कला संस्कृति और वारसा उत्सव कलाविधि 2026 प्रारंभ। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज भूज एनबीए की मान्यता प्राप्त थी हो कच्छनी एकमात्र तथा गुजरात की अग्र हरोड़ में स्थान पामनारी संस्था बनी। खाड़ी देशों में चाली रहेला तनाव और युद्ध जेवी परिस्थिति वच्चे सीमी जहाज स्टेट ऑफ होर्मुझ पास करीने कच्छना कंडला बंदरे पहुंच्यू। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुए पंजाब किंग्स ने 23 रने हराव्यू। हवे पछीना मुख्य समाचार 9:30 वाग्ये।

0: आकाशवाणी जो ही भज केंद्र है रजू करूं तो आसन जो कच्ची कार्यक्रम हलो करियों घाल भावेणों हलो करियों घाल में पा मिलता हो तो हमें शिक्षण साहित्य समाज स्थापत्य ओठा चोठा कहवतों पर निजी घालियों कर दा होता आज व्यसन जी घाल करनी है पाबेड़ों पाके खबर है कि डिया डी इतना व्यसन वधता वेने ता व्यसन में परिवार बर्बाद थिए ता घर बर्बाद थिए ता मारू जो स्वास्थ्य बर्बाद थिए तो व्यसन मुक्ति जे अलग अलग अभियान अलग अलग जगह ते चालू हुई अने पामड़े नेरियुता देवी समाचार रेडी ते सुनोता आज व्यसन मुक्ति जी गाल करेला आकाशवाणी जे स्टूडियो में है शिवजी भाई मोठ अरे शिवजी भाई मोठ जो परिचय दिया तो शिवजी भाई मोठ रिटायर्ड पोस्टमास्टर ताई पर साथे साथे कच्ची साहित्य जो भेड़ी ओढ़े आया सत थी वधारे एनी जा कच्ची साहित्य में पुस्तक आया ही अने अन्ना पर लिखे जो का मिली जो अभी तक चालू है आगे खबर है हेमारो पुस्तक एनी जो आए अने इनमें जे अकड़ी मेकरम दादाजी निबंध जी गाल पांजे विच में थोड़ो समय पहला क्या हुआ बस शिवजी भाई मोड फरी अज पांजे विच में आया ही व्यसन मुक्ति जी गाल करेला तो शिवजी भाई आकाशवाणी परिवार आके उम्र से आवकारे थी
1: आवार
0: अने आज जो को विषय है ये विषय जी छणावट अने माहिती ऐसा जे भावर अने भेणे कियो
1: व्यसन ओडी व्याधि रेगनम व्यसने भ्य स्वाति

विलित पैतानी निसर्वाणी समय रंती मानवं इतने विष्णु नु सैकड़ों योजन पर्यारो कारण ये प्राण घातक दुश्मन ही जेमे मादक द्रव्य मुख्य ही इनमें तमाकू चाय गांजो चरस भंग अफीण दारू बड़े नशीली चीजों हिकड़े बेन वधारे हानिकारक हैं जी थकल घोड़े के चाबुक मारे ने धड़ा मैचे तो वो छेटे इनमें घोड़े जी बचाली शक्ति यो नास्ती है तो ती नशे करे से शरू में थोड़ी स्फूर्ति जो अनुभव थी तो तेमें परिणाम बाकी रेल शक्ति जो नास्ती है तो मादक द्रव्य जो सेवन कंदल व्यक्ति डिया डी झांझरो थी अकार मौत में मौत जो मुंह में होना ही नहीं तो व्यसन भाई बंदी के रूप में आगे शरीर में घुसे तो अने दुश्मन बनी इनके मारे हुए तो नशीले पदार्थ उपरांत बिलू पेड़ियों टेवू हुए त्यों तो को शरीर के अने मन के नुकसान करे त्यों ये पर आकर्षण ने आदतें के कारण मारू इनजो गुलाम बनी हुए तो सिनेमा नाच गान जुगार इमरे कितनी नुकसानकारक अने अप अपकीर्ति डिंडल आदतें के कारण मारू फसाजी वे तो पेंजे धन अने समय अने स्वास्थ्य के बर्बाद करे तो ही दुर्वसन थोड़ी कृत्य जे जीवन जो नाश नहीं करे पर वडे वडे देश के समुदाय जो इनके कारण सर्वनाशी खड में छड़ी देता भारतीय इतिहास का वाचक कहता कि मुगल साम्राज्य झड़मूड में जा उखड़ी पियो इधारू के कारण इन परिणाम चीन देश अफीन के बंधारण नाश थो प्राचीन काल में मिस्र ग्रीस रोम वे प्रगतिशील शक्तिशाली राष्ट्र दारू के फंदे में फसाई में पतंग की खाई में पी चुके हुआ व्यसन एक शक्तिशाली राज पण व्यसन के कारण पतंग थी चुको जैके भगवान को न बचा सकया इन कारण पांजे शास्त्र में सोरापान की गणतरी महापातक में करे में अचे थी ब्रह्म हत्या सोरापानस्य सेतो गुरु लप्तम एते सर्व प्रथायस्य महापातक इन्ते नाश इतरे ब्राह्मण की हत्या करिंदल सोरापान ले धारू पिंदल चोर गुरु पत्नी को घमन करिंदल ही मेरे महापातक थी अने निंदा जे पात्र रही इनजो त्याग करी जनु खपे वधीरे जो सेवन करिंदल जी दलील है कि खाधी पुटिया थोड़ो दारू पियो तो पाचन क्रिया काफी थी थी पर सामी नजर से जरूरी लगे तो कि भोजन ले खाधे जो अची वे तो पर खोटी भूख लगे थी इनजो कारण जो यो है कि दारू में तेजाब हो तो जो को खाधे के घारे वजे तो इनकी प्रतिक्रिया मिजारा आंध्रे में थी थी मिजारा ने मिजारा आंध्रा पण गर्दा विने था ने शरीर जे पाचन तंत्र मथे जी दशा फिटा विजे थी दारू पीणु स्वभाव के अनुकूल में जब दारू जी प्याली हथ में गिनी मोट खणी अचे था तदे तेजी वास मगज में पुजे से चमड़ी सकोजा जी लगे थी अखियों बूचा जी विने थी माड़ू के स्वभाव के प्रतिकूल होंगे सका इनके जबरदस्ती से दारू पी वे तो दारू के बदले दूध जो ग्लास मोट खड़ी अचे तदे को अंग इनजो अस्वीकार न तो करे पर मारू इनके रस से पिए तो दारू जो सेवन से शरीर के प्रत्येक अंग में टेम ते चेतना वगैरह जो बनी वे तो बुद्धि निर्णय शक्ति आत्म संयम इच्छा शक्ति खासे बराबर जो विवेक न्याय अन्याय जी भावना कर्तव्य प्रेम करुणा स्वार्थ त्याग वेड़े नाश थिए तो खराब बोल मोह में जानु निकले लगे था अने सजे भूत के एक बार हलाय विजे तो जो को बोरो धारू पिए तो लथड़िया खाए तो अने शरीर में जा उल्टी रूपे बार निकली विजे तो मारू के धारू जी आदत बे आबरू बनाए थी धारू पाके कमजोर शक्ति वगैरह जो बनाए तो कमजोर रोनू अपराध है धारू पाके अपराधी ती गुनेगार बने तो इतने मिनी रीते इनके छड़े दिनो खपे धुको मारो उत्तेजक पदार्थ नु शक्ति प्राप्त करे जी इच्छा रखे ता ई भनावटी है माया जे मृगजाल में स्वाभाविक कुदरती शक्ति मारो जी वास्तविक मूड़ी है हकीकत में दारू में जा
शक्ति पैदा करे जी कल्पना एकड़ी भ्रांति माता रहे। तमाकू जो प्रभाव अज बेरो वधी हो है जने जमाने में इनजो कदे को दवा तरीके उपयोग थिंदो हो पर सैकड़े एकड़े वडे व्यसन जो रूप धारण करे गने ने छोकरे नु मंडी वड़ील जे मुंह में बीड़ी सिगरेट रखी ने फूकी जावे था इनमें भाइयों को बची नहीं सकी हूं इनजो जरा धुआनो वाड़ू के मरव कर जो आसू विलासी अने उत्तेजक स्वभाव जो बने चले तो तमाकू जो वधु उपयोग करिंदल के टीबी दिल की बीमारी चार पण मरे जाती बीमारियों थी थी विलायत जा वडा वडा डॉक्टर पण ये संशोधन करीने पुरवार क्यों नो कि महाभयंकर कैंसर जो रोग जो वडो कारण धूम्रपान है बीड़ी सिगरेट के हुक्के नु नुकसान थिए तो पांजे धर्म ग्रंथे में तमाकू के सेवन के मोरोज निंदास्पद गण्यों विष्णु पुराण में तमाकू पीदे से गरीबाई दुख की तमोगुण उत्पत्ति जो निर्देश करे में आयो है ती पद्म पुराण में पण तमाकू खेंगल नरक में ने तो सुवर जो अवतार मिले तो ती चोखो चे में आयो है तमाकू से दंड फिटी विने था पीड़ा थी विने था एकड़े डाकदर लखे ने तो तमाकू पिंगल जे पेट की सुमारी अने कोमर चमड़ी मते गोल गोल धागा थी विने था रोई समूह थी विने तो अने फेफसा कमजोर थी विने था हृदय जे धबकारे में विकार थींदे एकड़े प्रकार जो कंपन थिए तो तमाकू जो में एकड़ो भयंकर जहर रेलो है जेके निकोटिन चवा जे तो त्रे शेर तमाकू जे सुके पने में मिजा एकड़ो नवटांक निकोटिन कटी सका जे दे ई निकोटिन सोमल जहर नु पण वधारे घातक है जोको पण मारू के हरे हरे असर करे ने मारे विजे तो निकोटिन जो एकड़ो टीपो ससले जी चमड़ी ते विजे में अचे तो जरावार में तरफड़िया मारी मरी विने तो अने चीन में आपघात जो ही हथवकू साधन बनी हुए उड़ा जा मारू जीण में जा कंटाड़ी विने था तदे हुके जो सड़ल पानी के पीने पंजो जीवन पूरो करिए था शुरुआत में तमाकू पीदे से उल्टी झाड़ा अने चक्कर अचे था डॉक्टर केला के चोनो के अधसेर तमाकू में जा 380 ग्रेन निकोटिन नाले जो जेर हो तो एकड़े ग्रेन नू दसवों भाग खोते के 3 मिनट में मारे हुए तो एकड़े मारू इन जेर नू 3 सेकंड में मरी हुए तो ही झाड़े पोठिया बाकी न तो लगे कस्मा मजा विज पई है तमाकू मिणिया घातक प्रभाव पांजे लोई मथे पे तो वाड़ू जी लोई अने विकार वारो रोगी ने बर्वगर जो भना दे तो जडे ही जेरी लोई नशे में फिर दो है तदे हरे हरे इन मथे जो कब्जो जमाई दे तो मिणिया पहला रोग टीबी है टीबी जो कारण दूषित हवा है सिगरेट हुक्को कबीड़ी जो धुओ जडे साव सावटा नु मिझारा पुजे तो तदे जेरी प्रभाव पांजी जीवन शक्ति मथे पे तो वधु धूम्रपान करी गले जा फेफसा सड़ी वने ता तमाकू मगज शक्ति जो नाश करे तो हृदय रोग तमाकू जी विशेष प्रसादी है जेजो जेर पांजे हृदय अने फेफसे के हमलो करे तो तमाकू जे जेर जे प्रभाव नु हृदय की चमड़ी निर्जीव थी वे थी हृदय की गति आड़ी अवरी थी वे थी इन रीते तमाकू जे सजे स्वास्थ्य जो नाश करे तो कई जात जा विकार पैदा करे तो ई माड़ू जे शरीर ले एकड़ो एड़ो जेड़ी पदार्थ है इतने शरीर इनके किन पर संजोग में जरा नतो रखे इतने तमाकू खेंदल के जित तक थुके जी अने धुनास्पट कुटे पई वजे थी जेंजे कारणे खंगजे थी इनजे कारणे जुको माड़ू तमाकू पिए तो इनजी वडी अवस्था थींदे कायमी इनके खंग जी फरियाद रहती ई मरे तो ते सुंदी इनकी खंग छड़े न थी भेरो भेरी बिनी थी अज भारत जे सजे विश्व में एकड़े धुआं देश तरीके उभरी आयो है 65% अस्थी जो धुआणिया जी है ही धुआं तो कड़ा जो पैण में जा पानी कढ़ी सके अज पांजो देश यानि युवा शक्ति जे कारण सिद्धि जा कई सोपान सर करे तो धुआणे जी काबिलियत जे कारण अज पांजे मणि जे मोर्चे जा पा वधी रहा आयो स्वामी विवेकानंद जी

0: विनेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
0: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओ, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
0: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
0: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन भाई और मोतिम भाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
0: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली व्हेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
0: इस

0: का उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
1: जी।
0: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है?
0: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं?
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विवेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। पर अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: आई
4: एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड, ओके, सो टेल मी, what do you like most?
6: I like playing, sir.
7: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
10: Yes, sir.
11: We like.
2: Lovely butterflies?
10: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
10: Yes, sir. We like.
2: That's very nice, children.
12: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
10: Yes, sir.
2: The rivers, the mountains, and the green trees.
10: Yes, sir.
2: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
10: Like us?
2: Would you like to listen?
10: Yes.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
10: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
10: Okay, sir. You love to recite it.
2: As I lie on my back, looking up at the sky,
10: looking up at the sky,
2: I see a big white bear.
10: I see a big white bear
2: looking down at me.
10: Looking down at me.
2: As I lie on my back,
10: as I lie on my back,
2: looking up at the sky,
10: looking up at the sky,
2: I see a ship sailing. On a white sea.
10: On a white sea.
2: As I lie on my back.
10: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
10: Looking up at the sky.
2: I see an elephant.
10: I see an elephant.
2: Waving its trunk at me.

0: प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
2: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती है।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागवानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत

0: पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो दो दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
0: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
1: और कितना नहीं दिया जाए।
0: हाँ
1: तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात।
0: हाँ,
1: क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
0: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
0: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं, और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ,
1: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
0: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
1: बिल्कुल होता है,
0: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
1: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
0: है ना?
1: जी।
0: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूँ। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूँ।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है, और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।

कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए, भंडारण किस तरह से करना चाहिए।

0: माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे। तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
1: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
0: अच्छा।
1: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
0: अच्छा।
1: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
0: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
0: अच्छा।
1: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई।
1: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हो तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं। समझे
0: जी? ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
0: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
2: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 7 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलाइन लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic

0: कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: हमने जो आप सामने गया था प्रायोजित कार्यक्रम उमंग जेना प्रायोजक था NCERT प्रसारण आकाशवाणी भूज केंद्र पर करवामां आव्युं।

आकाशवाणी भुज प्रस्तुत छे मुख्य समाचार। राज्यना ड्रीम प्रोजेक्ट कल्पसर योजनाने नेधरलेंड्सने टेक्निकल कुशलता ने निपुणतानो लाभ मळशे। केन्द्रीय सहकार मंत्री अमित शाहे कह्यु राज्यमां 36 लाख पशुपालक बहनों प्रतिदिन 200 करोड़ रूपियानी आवक मेळवे छे। वस्ती गणतरी 2027 अंतर्गत स्व गणतरीनो गईकालथी प्रारंभ थयो। आ वखतनी वस्ती गणतरीमां प्रथम वखत शरू करायेली स्व गणतरी पद्धतिथी ऑनलाइन पोर्टल अने मोबाइलथी माहिती आपी शकाशे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 मेना रोज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रममां देश अने विदेशना लोको समक्ष पोताना विचारो रजू करशे। आ मासिक रेडियो कार्यक्रमनी 134मी कड़ी हशे। केन्द्रीय गृह अने सहकार मंत्री अमित शाहे गुजरातना गांधीनगरमां 700 करोड़ रूपियाथी वधुना विकास कार्योनी भेट आपी। क्रांतिगुरू श्यामजी कृष्णवर्मा कच्छ युनिवर्सिटीना विज्युअल आर्ट्स विभाग तेमज कच्छ म्यूजियम भूजना संयुक्त उपक्रमे कच्छ म्यूजियमना एक्जिबिशन हॉल खाते त्रिदिवसीय कला संस्कृति ने वारसा उत्सव कलाविधि 2026 प्रारंभ। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज भूज एनबीएनी मान्यता प्राप्त थई होय तेवी कच्छनी एकमात्र तथा गुजरातनी अग्रहरोळमां स्थान पामनारी संस्था बनी। खाड़ी देशोमां चाली रहेला तणाव अने युद्ध जेवी परिस्थिति वच्चे सीमी जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ पार करीने कंडला बंदरे पहोंच्युं। विमानी मुसाफरीमां नियत सामान भथ्थाना तोरणोनुं कड़क पालन करवा अनुरोध करायो। जिला मथक भूज खाते बीएएमएस डॉक्टर्स संगठन द्वारा आरोग्यलक्षी कार्यक्रम योजायो। लुप्त थती गधेड़ानी जातनी संख्या वधारवा केन्द्र सरकारनी महत्वपूर्ण पहल अंतर्गत गधेड़ा उछेर माटे 50 लाख रूपया सुधीनी सबसिडीनी जाहेरात। गरमीनी ऋतुमां लू अने ताप वच्चे वकरती पेटनी समस्याथी बचवा अदाणी संचालित जीके जनरल होस्पिटलना तबीबोए उपायो सूचव्या। जे मुजब लींबु पाणी, नारियर पाणी, दही, छाश, लस्सी, तरबूज, सकरटेटी, काकड़ी जेवा पीणा, फळो, शाकभाजी फायदारूप होवानुं जणावायुं। आईपीएल क्रिकेटमां दिल्ली कैपिटल्से राजस्थान रॉयल्सने हरावी प्लेऑफनी आशा जीवंत राखी। राज्यना 10 वधु शहेरमां तापमाननो पारो 41 डिग्री सेल्सियसने पार। હવે પછીના મુખ્ય સમાચાર સાંજે 5:10 અપાશે। આકાશવાણી ભુજ પ્રસ્તુત છે સંતવાણી, સાંભળે પ્રફુલ્લ દવે અને સાથીઓના સ્વરમાં કેટલાક ભજન।

0: अटल पेंशन योजना मोदी जी वहां संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल में होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपने बुढ़ापा के विचारों के साथ बिता सको।
0: अत्यार सुधी में 8,85,00,000 की वधु लाभार्थियों आ योजना में जोड़ाया है। जो तुम्हारी उम्र 18 से 40 वर्ष की बच्चे हो तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना न 3 गारंटीड लाभ विषय जानवा तुम्हारी बैंक शाखा नो संपर्क करो।
2: આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી આપ સાંભળી રહ્યા છો કાર્યક્રમ સંતવાણીમાં પ્રફુલ દવે અને સાથીઓના સ્વરમાં કેટલાક ભજન।

0: अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आप अध्ययन करो शो आकाशवाणी भूज केंद्र ने आप सांभी रहा शो हिंदी फिल्मी गीतों कार्यक्रम मनोरंजन। हवे पछी गीत कुमार सानू अने अलका याग्निक ना युगल स्वर्मा फिल्म जीना तेरी गली में।

0: दोस्त के छतरी में उपयोग करो। मसालेदार खाना के बदले पानी में सारो प्रमाण धरावता मौसमी फलो जेवा के तरबूज टेटली वगैरह बदलो। अच्छा रंगना सुतराव कपड़ा पहरो। टाइम छताय जो लू लगे तो तात्कालिक ORS अथवा मीठा और साकर ना पानी नु सेवन करो। छायडा वाली जगह अने बने तो ठंडक वाली जगह रहो। इमरजेंसी में डॉक्टर ना तात्कालिक संपर्क करो। प्रकृति तो पोतानु स्वरूप बताशेज। जो साथे महीने रहेशु सचेत तो लू ना प्रकोप सामे थईशु सुरक्षित।
1: कुमार सानू अने अलका याग्निक ना युगल स्वर में सांभळ्या गीत फिल्म हम है राही प्यार के।

0: मशीन में पकड़ ना पता लग चेक ना पता रहा शू
1: बदलो बदलो आदत बदलो हवे नजीक ने बैंक में जाई फाटेली जूनी नोट बदलावो जो बैंक ना पाड़े तो आरबीआई नी ओम्बुड्समैन ने फरियाद करो आरबीआई कहे छे जानकार बनो सतर्क रहो
2: क्या चाले मम्मी तुम राशन कार्ड लेने उतावड़े
3: अरे बेटा राशन कार्ड में नाम खोटू आयु हमें कचेरी जवुज पड़े
2: अरे मम्मी क्या नहीं जवानू आज सुगम डिजिटल गुजरात
3: पर बेटा आम सुधारो थे मारे फरी लाइन में तो नहीं उभार पड़े ने
2: ना सुगम छे इतले बधुज शक्य छे
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ना नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ना प्रयत्नों फल स्वरूप हवे आवक नो दाखलो जाति नु प्रमाण पत्र अने रेशन कार्ड ने लगती 20 थी वधु सेवाओ हवे ऑनलाइन तो बस घरे बैठा अर्जी करो अने तमारा दस्तावेजो व्हाट्सएप पर मेळवो आज ज मुलाकात लो www.digitalgujarat.gov.in सुगम डिजिटल गुजरात लाइन थी ऑनलाइन
5: કાર્યક્રમના અંતમાં સાંભળીએ ફિલ્મ ચલતે ચલતેનું આ ગીત અભિજીત અને સાથીઓના સ્વરમાં

कदी गर्गम्मा कोला एक बार महु और कृपाली नजर करीजे अनगरज सुनी निंगाई दजाड़ी शरणों दीजे भुवनेश्वरी प्रण भुवन में अमून दूजो आशरो कर जोड़ गाल विनती कर ऐ मारी कृपा सिंधु करुणा करो। माँ भगवती ने कवि विनती करे छे आराधना करे छे कहे माँ केवी प्रार्थना करे छे शू कहे छे सुंदर बीन धरी कर सुंदर सुंदर लागत सुंदर सारी सुंदर पासन गासन सुंदर सुंदर मोर मराल सुवारी सुंदर नाम तुकाम है सुंदर सुंदर सेवक काज सुधारी।

हिरण्याकाश पाताळ तो नरगंबर नाग सुर नर पायन में हिरण्याकाश पाताळ तो नरगंबर अन पायन में दिगपाल दिगंबर गाठी डूंगर साथ ही सायर तेन समय नवनाथ अने नर चौसठ नारी हाथ पसारी तेमरी रवराज रवैसी भक्त प्रमेशी वक्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और पांच नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Vasa Williams. Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his two-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden, and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister

अरुण देसाणी ने रचना आप सुन रहे थे शिल्पा पंडित वर्मा सुगम संगीत नो कार्यक्रम समाप्त थाय छे। प्रसारण आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा राजकोट अने भूज केन्द्रों पर थी करवामां आव्युं। एक वगैरह 20 मिनिट सांभळीशुं गुजराती में समाचार।

पेश है फौजी दोस्तों के लिए विशेष कार्यक्रम जय भारती। दोस्तों जय भारती कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं अभिमान। इस फिल्म में सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को।

0: अय्या अय्या आनंद प्रभु वहां पर इस मंदिर में उनके घर में।
1: देखिए ना, अब रुक क्यों गए?
2: भैया मैं देखी था

जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।

मंगल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है तुम्हारा मंगल क्या हो

जय भारती कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं अपना देश इस फिल्म का गाना, आवाज आशा भोसले और आर डी बर्मन।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आन मिलो सजना फिल्म का ये गाना।
1: अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं।
2: कब मिलोगे?
1: जब तुम कहोगे।
2: मेरा आँखों
1: कहाँ आधी रात को
2: कहाँ

जय भारती कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी का अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भुज केंद्रों से किया गया। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

0: कि उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
1: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आई। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवीं उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू

0: की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपए हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृतकाल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ मन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष

0: शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी इस समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: श्री मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि SOM बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ अधिकारी वैकल्पिक विवाद समाधान ABR से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। वहीं विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं, ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके और विदेश के नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। केरल में नई UDF सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और रसोईया कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना शामिल है। राज्य में नई विधानसभा का सत्र इस महीने की 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्ले ऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashwani. The news read by Anujay Kumar. In Norway, Prime Minister Modi held bilateral talks with Norway's Prime Minister Jonas Gahr Støre in Oslo a short while ago. Both leaders addressed the gathering after conclusion of their talks. Prime Minister Modi said India-Norway trade ties are strong and promising.
1: नॉर्वे की यात्रा करते मुझे बहुत खुशी हो रही है. यह देश नेचर और ह्यूमन प्रोग्रेस के बीच हार्मनी का एक सुंदर उदाहरण है. सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का इस आत्मीयता भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कल नॉर्वे के कॉन्स्टिट्यूशन डे के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से नॉर्वे जैसे सुदृढ़ और जीवंत लोकतंत्र की यहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं.
0: And now we go live to the Prime Minister's address there. Our Prime Minister just ended the address. Moving on, Defence Minister Rajnath Singh has reached Hanoi in Vietnam this afternoon. He is on a two-nation visit to Vietnam and South Korea. In a social media post, the Prime Minister said that he is looking forward to visiting the Asian nations to further expand the scope of bilateral engagement. He said the focus will be on deepening strategic military cooperation, strengthening defense industrial partnerships, boosting maritime collaboration, and promoting peace and stability in the Indo-Pacific region. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today launched the website of Bharat Vyapar Mahotsav in New Delhi. Mr. Goyal said that India is progressing rapidly despite global challenges and uncertainties. He emphasized that the enthusiasm to move forward should never diminish and everyone must continue working tirelessly.
2: India, my products and services should expand even more rapidly across the world. We should not be satisfied merely because we are the world's fastest growing economy. We must never become complacent and should always think about bigger leaps forward. We need to continuously reflect on what more can be done, keep working tirelessly and keep bringing new ideas and innovations forward.
0: The government has said that refineries in the country are operating normally and India has sufficient crude inventories despite the import disruption due to the ongoing West Asia crisis. Addressing the inter-ministerial briefing in New Delhi today on recent developments in West Asia, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said the country has sufficient stock of petrol, diesel, LPG and natural gas.
3: 1.72 crore LPG cylinders have been delivered against the booking of 1.69 crore request. Regarding American waiver on Russia, I would like to emphasize that we have been purchasing from Russia earlier and before waiver also, during waiver also and now also. So it is basically the conversion false. It should be there for us to purchase. And there is no shortage of crude. Enough crude has been tied up. Whatever waiver or no waiver, it will not affect our supplies and all efforts have been taken to that effect.
0: The West Bengal government has constituted two inquiry commissions to investigate alleged institutional corruption and atrocities against women in line with its election promises. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced the decision today after approval by the state cabinet. Retired Calcutta High Court Justice Biswajit Basu will head the commission probing institutional corruption. Senior IPS officer K. Jaraman of ADG rank has been appointed the member secretary. The IMD has forecast heat wave to severe heat wave conditions over plains of northwest India and central India for several days during the week. And in IPL cricket, host Chennai Super Kings will take on Sunrisers Hyderabad at 7:30 p.m. this evening. In the latest standing, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far and remain firmly in the playoff race. Chennai Super Kings are fifth with 12 points, having registered 6 wins this season and remain in contention for a top 4 finish. And that is the end of this news bulletin.
4: Welcome.
0: आकाशवाणी भुज प्रस्तुत छे आज ना मुख्य समाचार। स्वीडन नी बे दिवस नी सफर यात्रा बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे ना ओस्लो पहुंचा। श्री मोदी भारत अने नॉर्वे वच्चे द्विपक्षीय वाटाघाटो में भाग लेशे अने त्रीजा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेशे। केरलममां कोंग्रेसना वरिष्ठ नेता वी डी सतीसन्ना नेतृत्व हेठळना नवा मंत्रीमंडळे आजे तिरुवनंतपुरम खाते शपथ ग्रहण कर्या। संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह आजथी वियतनाम अने दक्षिण कोरियानी मुलाकाते जवा रवाना। केन्द्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाले आजे आंतरराष्ट्रीय दरियाई महिला दिवस पर महिला नाविकोना अदम्य जुस्सानी प्रशंसा करी। રાજ્યભરમાં હાલ વસ્તી ગણતરીના પહેલા તબક્કાના ભાગરૂપે સ્વ ગણતરી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આજે સુરતથી સ્વ વસ્તી ગણતરી નોંધણી પૂર્ણ કરી। આગામી 1 જૂનથી વસ્તી ગણતરીના પહેલા તબક્કાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। તે અગાઉ આગામી 31 મે સુધી લોકો સત્તાવાર વેબ પોર્ટલ પર જાતે માહિતી ભરી વસ્તી ગણતરીમાં સહભાગી થઈ શકશે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યના લોકોને આંતરરાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય દિવસની શુભેચ્છા પાઠવી। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના વિકાસ ભી વિરાસત ભીના વિઝન સાથે રાજ્યના મ્યુઝિયમ વૈશ્વિક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા। રાજ્યમાં એશિયાટિક સિંહોની સુરક્ષા અંગે વન વિભાગ દ્વારા કાર્યયોજના તૈયાર કરવામાં આવી। રાજમાર્ગ પર સિંહોની અવરજવર રહેતી હોય તેવા અંદાજે 20 જેટલા ભૌગોલિક સ્થળોએ સિંહોની સલામતી અને વાહનોની ગતિ પર નિયંત્રણ લાવવા વિશેષ કામગીરી કરાશે। ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણવર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટીના વિઝ્યુઅલ આર્ટસ વિભાગ તેમજ કચ્છ મ્યુઝિયમ ભુજના સંયુક્ત ઉપક્રમે કચ્છ મ્યુઝિયમના એક્ઝિબિશન હોલ ખાતે 3 દિવસીય કલા સંસ્કૃતિ અને વારસા ઉત્સવ કલાવિથી 2026નો પ્રારંભ। સરકારી પોલીટેકનિક કોલેજ ભુજ એનબીએની માન્યતા પ્રાપ્ત થઈ હોય તેવી કચ્છની એકમાત્ર તથા ગુજરાતની અગ્ર હરોળમાં સ્થાન પામનારી સંસ્થા બની। જિલ્લા મથક ભુજ ખાતે બીએએમએસ ડોક્ટર્સ સંગઠન દ્વારા આરોગ્યલક્ષી કાર્યક્રમ યોજાયો। રાજ્યમાં આગામી 24 કલાક મહત્તમ ઉષ્ણતામાનમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા નહીવત। આજે દિવસભર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં ગરમ અને ભેજવાળું વાતાવરણ। હવામાન વિભાગે લોકોને હીટવેવ દરમિયાન બપોરના ભાગે બિનજરૂરી બહાર ન જવા, બહાર જવાની ફરજ પડે તો માથું ઢાંકીને જવા, સતત પાણી પીતા રહેવા તેમજ હળવા રંગના ખુલતા કપડા પહેરવાની સલાહ આપી। આઈપીએલ ક્રિકેટમાં આજે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે મુકાબલો। હવે પછીના મુખ્ય સમાચાર સાંજે 7 વાગીને 5 મિનિટે અપાશે।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने प्रयत्न फल स्वरूप हम आवको दाखिल ज्योति प्रमाणपत्र और राशन कार्ड ने लगती 20 से बड़ी सेवाओं हम ऑनलाइन तो बस घरे बैठा अर्जी करो और तुम्हारा दस्तावेजों व्हाट्सएप पर मेलो आज ही मुलाकात लो www.digitalgujarat.gov.in सुगम डिजिटल गुजरात लाइन थी ऑनलाइन।

मैं इनमें इंतजाम नहीं मोहम्मद रफी ने लेडीज टेलर फिल्म में फिल्म में

0: नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। हाणे तव्हीं माला खूबचंदाणी खां ख़बरूं ॿुधंदा। सभ खां अवल मुख्य सुर्खियूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीअ नॉर्वे जे ओस्लो में नॉर्वे जे प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरेर सां वफ़द सतई मज़ाकरात कई। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन वीहनि मंत्रियुनि सां गॾु केरलम जे मुख्यमंत्री पद जी कसम खई। घरू मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ जे रायपुर जिले में 400 इमरजेंसी वाहन खे साई झंडी ॾेखारे रवानो कयो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिन मुल्कनि वियतनाम ऐं ॾखण कोरिया जे दौरे दौरान अॼु मंझंदि जो वियतनाम जी राजधानी हनोई पहुतो आहे। कानून ऐं न्याय वज़ारत सुभाणे खां गुजरात जे गांधीनगर में ॿिनि ॾींहनि वारी ब्रिक्स बर्ख अमलदारनि जी बैठक जी मेज़बानी कंदो। ऐं आईपीएल क्रिकेट में अॼु शाम जो चेन्नई सुपर किंग्स ऐं सनराइजर्स हैदराबाद जे विच में मुकाबलो। हाणे ख़बरूं तफ़सीलवार ॿुधंदा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐं नॉर्वे जे प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरेर ओस्लो में वफ़द सतह ते मज़ाकरात कई। ॿिन्ही अॻवाननि भारत नॉर्वे लाॻापन खे सरसब्ज रणनीतिक भाईवारीअ ताईं वधाइण ते रज़ामंद थिया, जेका साफ़ सुथरी तवानाई, ब्लू इकोनॉमी ऐं सरसब्ज बदिलाउ जे खितनि में सहकार खे वधाइण में हिकु अहम मील जी निशानी आहे। ॻाल्हियुनि दौरान ॿिन्ही रहनुमाउनि ॿितरफ़ी लाॻापन जे सभिनी पहलुअनि ते नज़रसानी कई ऐं तिजारती वापार, सीड़प, ब्लू इकोनॉमी, वरी हासिल थी सघंदड़ शक्ति, तहलीम, साइंस ऐं तकनीक, एआई, अवकाश ऐं आर्कटिक खिते समेत खितनि में सहकार वधाइण ते रज़ामंद थिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीअ चयो त
1: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी से लेकर के ग्रीन शिफ्टिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
0: इन खां अॻु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीअ जो ओस्लो में रिवायती तरीक़े सां स्वागत कयो वियो। सुभाणे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी टें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल थींदो। असांजे खातो ॼाणायो त इहो दौरो नॉर्डिक मुल्कनि सां गॾु भारत जे रिश्तनि नातनि खे रफ़्तार ॾींदो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीअ चयो आहे त स्वीडन जी संदसि जी यात्रा जा केतिरा ई अहमियत भरिया नतीजा निकिता आहिनि, जेके बाहिमी रिश्तनि नातनि खे हिकु नई रफ़्तार अता कंदा। सोशल मीडिया पोस्ट में हुन चयो त बाहिमी लाॻापन खे रणनीतिक भाङेबाईवारीअ जी सतह ताईं पहुचाइण वारो इहो क़दम अहमियत भरियो रहियो। केरलम में कांग्रेस जे बर्ख नेता वी डी सतीशन जी अॻवानीअ वारी नई यूडीएफ सरकार अॼु तिरुवनंतपुरम में कसम खई। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर नवनि मंत्रियुनि खे कसम ॾियारी।
2: നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
0: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉഹിദ പദ ജി കസം ഖരണത്തെ മണി മുബാർക്കും ഡിഞ്ഞു।

0: सां जुड़ियल वधीक जी ॼाण पोइ ॾिनी वेंदी। हू पंहिंजी कैबिनेट जी पहिरीं बैठक खां पोइ मीडिया खे ख़िताब करे रहियो हो। राज्य में नई विधानसभा जो इजलास हिन महीने जी 21 तारीख ते मुंतज़िम कयो वेंदो, जंहिंमें नवनि मेंबरनि खे कसम खणाई वेंदी ऐं अध्यक्ष जी चूंड कई वेंदी। भारत जे ब्रिक्स सरबराहीअ में कानून ऐं न्याय वज़रात सुभाणे खां गुजरात जे गांधीनगर में 2 ॾींहनि वारी ब्रिक्स बर्क अमलदारनि SOM जी बैठक जी मेज़बानी कंदो। इन बैठक खां पोइ 21 मई खां ब्रिक्स न्याय मंत्रियुनि जी बैठक मुंतज़िम कई वेंदी। कानून ऐं न्याय वज़रात चयो त SOM बैठक में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन ऐं ॾखण अफ्रीका जा बर्क अमलदार वैकल्पिक विवाद निबेरे ADR सां वाबस्ता मुद्दनि ते वीचारनि जी ॾे वठि कंदा।
1: ही ख़बरूं तव्हां आकाशवाणी तां ॿुधी रहिया आहियो। ही ख़बरूं तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल एयर न्यूज़ गुजरात ते पिणु ॿुधी सघो था। वधीक ख़बरुनि जी तफ़सीलात जे लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अॼु मंझंदि जो वियतनाम जी राजधानी हनोई पहुतो आहे। तव्हांखे ॼाणायूं त हू अॼु खां ॿिनि मुल्कनि वियतनाम ऐं ॾखण कोरिया जे दौरे ते आहे। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्रीअ चयो त हू भाइमी लाॻापन खे अञा वधीक मज़बूत करण जे लाइ ॿिनि एशियाई मुल्कनि जी यात्रा करण जे लाइ मुंतज़िर आहे। हुन चयो त इन यात्रा दौरान रणनीतिक सहकार वधाइण, रक्षा उद्योगिक बांगे भाईवारी मज़बूत करण, सामूंडी सहकार वधाइण ऐं हिंद प्रशांत खिते में अमन चैन ऐं स्थिरता खे ओज ॾियण ते ध्यान मर्कोज़ कयो वेंदो। वियतनाम जे दौरे दौरान श्री राजनाथ सिंह उतां जे रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग सां गॾु भाइमी मज़ाकरात कंदो। ॾखण कोरिया में श्री राजनाथ सिंह पंहिंजे सानी अहन ग्यू बैक सां भाइमी ॻाल्हि ॿोल कंदो। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल चयो आहे त आलमी ललकारुनि ऐं गैर यकीनीअ जे बावजूद भारत तेज़ीअ सां अॻिते वधी रहियो आहे। अॼु नई दहिलीअ में भारत वापार महोत्सव जी वेबसाइट लॉन्च कंदे वक़्ति श्री गोयल चयो त अॻिते वधण जो जोश कॾहिं बि घटि थियण न घुर्जे ऐं सभिनीनि खे लॻातार कम करण घुर्जे। हुन वधीक ॿुधायो त
2: प्रोत्साहित किया अमृतकाल में मेहनत करने के लिए वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए मैं लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: घरों ऐं सहकारिता मंत्री अमित शाह अॼु छत्तीसगढ़ जी राजधानी रायपुर में मुंतज़िम राज्य सतही समारोह में 112 नंबर वारी इमरजेंसी शेवा ऐं जदीद तरीन फॉरेंसिक मोबाइल वैन जे ॿेड़े खे रवानो कयो। इन ॿेड़े में 400 वाहण शामिल आहिनि। इन मौके ते मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तोड़े छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह शामिल हुआ। पेश है एक रिपोर्ट असांजे खातू खां।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: IPL क्रिकेट में अॼु चेन्नई सुपर किंग्स जो मुक़ाबलो सनराइज़र्स हैदराबाद सां थींदो। इहा मैच चेन्नई में शाम जो 7:30 बजे खां शुरू थींदी। उत्तर प्रदेश जे लखीमपुर खीरी ज़िले में अॼु हिकु ट्रक ऐं वैन जे टकराइजण वारे रोड हादसे वाक़िए में 9 माण्हू अजल जो शिकार थिया। वैन में 2 महिलाऊं समेत 10 शख़्स सवार हुआ। इहो हादसो ज़िला हेडक्वार्टर खां 40 किलोमीटर मुफ़ासिले ते पीलीभीत बस्ती हाईवे ते अदालीसरपुर ॻोठ वेझो थियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ऐं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीअ इन हादसे

वाक़े में हयाती वञण ते गहरी दिलसोजी ज़ाहिर कई आहे। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड मां हर एक फौत थियल शख्स जे कुटुंब खे 2 लख रुपया ए जख्मीलन के 50,000 रुपया मुआवजो देण जी पधराई कई आहे। आखिर में मुख्य खबरों एक बार बीहर बुधंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे जे ओस्लो में नॉर्वे जे प्रधानमंत्री सा वफद सतई मजाकरात कई। घरो मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ जे रायपुर जिले में 400 इमरजेंसी वाहन के साई झंडी देखारे रवानो कयो। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन वीएन मंत्री सा गड केरलम जे मुख्यमंत्री पद की कसम कई। ये खबरू तव आकाशवाणी ता बुधी रहा। इत खबरू पूरी थी। नमस्ते।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोरा ने ओस्लो में सीमित और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तथा आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यापक अवसरों का भी उल्लेख किया। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए

प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उच्च ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गड़ना जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बसवजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अयोध्या नगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटे में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया।

सिंगला, दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली

0: मौजूद हैदराबाद की डिश पर प्ले ऑफ की ओर करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष चार में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: प्रस्तुत मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत नोर्वे संबंधों ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्तर पर लई जवानी जाहरात करी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ बस्तर में शहीद वीर गुंडादूर सेवा डेरा योजना जनसुविधा केन्द्र उद्घाटन कर। केरला में कांग्रेस वरिष्ठ नेता वेडी सतीसन नेतृत्व हेठ नवा मंत्रिमंडले शपथ ग्रहण कर। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम और दक्षिण कोरिया की मुलाकाते जवा रवाना। वस्ती गणतरी 2027 स्वगणतरी प्रक्रिया प्रारंभ। 17 मे थी 31 मे सुधी नागरिकों घर बैठा ऑनलाइन कर सकते स्वगणतरी। राज्य में एशियाटिक सिंहों की सुरक्षा अंगे वन विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार करवामां आवी। गुजरात बोर्ड द्वारा धोरण 10 और 12 नी ऑनलाइन मार्कशीट जाहिर थया बाद हवे आगामी अठवाडिया थी शालाओं मार्फते हार्ड कॉपी नुं वितरण शुरू कराशे। कच्छ जिला में आवतीकाले 5 नगरपालिका और गांधीधाम महानगरपालिका नी मळनारी प्रथम सामान्य सभा में 20 वर्ष माटेना होदेदारों नामों जाहिर थवानी संभावना। स्वच्छ सर्वेक्षण और निर्मल गुजरात 2.0 अभियान अंतर्गत गांधीधाम महानगरपालिका की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक विरुद्ध व्यापक झूंबेश हाथ धरी। भूज स्थित गुजरात में सौथी जूना कच्छ म्यूजियम खाते लोकोए प्राचीन शिलालेखो और कच्छी संस्कृति नो वारसो निहाळी आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की करी उजवणी। भूजनी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज तमाम 5 डिप्लोमा अभ्यासक्रमों ने वर्ष 2028 सुधी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन की मान्यता मिली। राज्य में आगामी 24 कलाक दरमियान महत्तम तापमान में फेरफार होने शक्यता नहीवत। मुख्य समाचार पूरा थया।

आज के हवा महल में प्रस्तुत हो सकी ये भी खूब रही। लेखक उर्मिला मिश्रा, निर्देशक चंद्र प्रभा भटनागर।

आवाज मेरी सुनो, जैसे चाहे मैं हो जाए चीनी। आपके जीवन में बोलते हैं संगीत, बोले दूसरे गीत, दूसरे तार की आवाजें, धुनों की अनूठे परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपके सुबह को बनाए खास, बोले दूसरे गीत, हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय देश की सुरीली धड़कन। कुछ पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र।

जो प्रयोग कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम के पहले पेशकश सनी और शंकर महादेवन की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल है और संगीत है शंकर शरण राय का।

भी आपने शंकर विशाल राय के सजीव निर्देशन में पुंगा फिल्म का गीत सुना। शंकर विशाल राय के सजीव निर्देशन में एक और गीत सुनिए, आवाज़ें जावेद अली और हम सिकाई की। फिल्म का नाम है इट्स माय लाइफ।

संगत है। म्यूजिक सुने सोनूनिगम और श्रेया घोषाल को। संगीत तैयार किया है विक्की प्रसाद ने, बोल गरिमा बहाल के। फिल्म का नाम टॉयलेट एक प्रेम कथा।

साथ में उसके फूफा रहे पलाश भी और साथ में आतिफ असलम भी। वो है अलक मुचल की फिल्म का नाम स्वीटी वर्ड्स एनआरआई।

मोहित चौहान के गायस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली के केंद्र से समाचार।

प्रधानमंत्री मोदी को मानवीय के राजा हरियाण पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द नाइट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर बातचीत की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा

कार्रवाई के प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार

में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना के लिए, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।

स्वास्थ्य समग्रण डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान पर काम करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से जुड़े विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा

आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुम्बकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान।

0: है बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, यह भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गो एवं साझेदारी सैन्य कंडक्टर पहुँच रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए शिपाया भाटिया।
1: यह समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया जाए।

अच्छा रहता है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती।

0: भारत ने परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्यन्मुखी साझेदारी है। डॉ जितेन्द्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी है।

0: बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं।
1: इस बीच सरकार ने यूट्यूब के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहमदनगर से नीट परीक्षा प्रतिहित मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई

वेबसाइट www.newsonair.co.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बदला ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास में शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
1: और बीच में एक ब्लैक था। निचले जो आप कह रहे हैं आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मैं गाते गाते आप इस दीवार से जाते हैं जब कर जाते। मैंने कहा बोलती है क्या ज्यादती है भाई, मैं भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, भाग भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। तो बड़ी टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी गई।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारत।

अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

सिनेमा संचार से फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गई। कम तकदीर में गोपाल के छोटी लड़की की भूमिका निभाई।

1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

शकर में अमर प्रेम प्यार की कहानी जिंदगी जिंदगी रिवाज बुनियाद हीरा बाटे जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बाबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म पारस के बाद इन्हें जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत

मलाई 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रिटेनिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गई। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हीरो फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आई जिसमें उन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में दरवेश। सन 1994 में फिल्म आई थी मोमो जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मोमो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को दो अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई जिसमें लाला जयवंती यानी लाजो की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

हम दो हजार में है राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जहान ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी है राम। सह नायिका बहन पत्नी माँ भाई माँ दादी माँ इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

कहा ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम। सविता जमाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। सविता जमाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। ये कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंट्री की। साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बिंदल। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आई। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर अंग्रेज बर्नावर के साथ हुआ जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और साथ में थे उनके पति तब्रेज। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ।

फहीदा जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फहीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फहीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब दलित भारतीय परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं।

0: उसमें 50% 50 टका हाथ जो है सिर्फ सोल आइटम का है,
1: संगीतकार ओपी नैयर।
0: ये हकीकत है, उसको बाकी लोग नहीं मानेंगे, जितना चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ भी बगैर सोल आइटम है, वो दूसरों की बात नहीं करता। अब 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है।

जो दिल जो गमगीन हुआ था और ये नजरें भी जो खफा हो गई। चलो भूल जाते हैं।

महफिल कैसे बताएं कि जो मोहब्बत खिली है हमारे बीच वो कितनी है, चमचमा रही है जो आसमान में गिनियों में, ये तो बस उन सितारों जितनी है।

0: तरीके से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छह गीत
1: अच्छा बेटा अच्छे चाहे तुझे पूजा मैंने बस इतनी खता है मेरी और खता क्या

बोल दिए हैं अनकहे बोल, बजने लगी है मोहब्बत की सरगम। कैसा इत्तेफाक है, सज रही है उम्मीद की वादियां और बस गई हैं अरमानों की बस्तियां। ये कैसा इत्तेफाक है।

विचलते जुल्फों में उड़ा दिए हैं होश। दीवाना तो था ही ये दिल, अब है मतवाला भी और है मत होश।

कानून लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना के लिए, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में त्रिपक्षीय सहयोग समझौता सहित कई समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल संयोग

अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को नया विकास समाधान प्रदान करेंगे। नोएडा के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नोएडा के रोडा हेराल्ड पंचन में रॉयल नॉरवेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय यात्रा करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैत्तारेल्ली से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत बोरा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत वजी करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।